0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल, बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 0664204670, मोबाइल नम्बर 9846656238।

0: तो कब करेगी शादी?
1: मेरी दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी।
0: क्यों?
1: दादी बोलती है तू दुनिया में सबसे अलग है।
0: तेरी दादी और दुनिया को

करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: हाय बेबी,
2: एयरपोर्ट मत आओ, मैं नहीं आ रहा।
1: नहीं आ रहे मतलब?
2: मींस आई एम नॉट कमिंग बैक, आई कांट। जितना प्यार तुम मुझसे करती हो मैं उससे करता हूं।

0: घर पे बहुत बोर हो रही
1: हूँ,
0: कहीं चले?
1: कहाँ?
0: कश्मीर?
1: इस महीने नहीं बाबा, बहुत बुकिंग है। अगले महीने?

0: स्वामी
1: जी। आयशा सिगरेट पीती है।
0: मुझे पता है मां। अरे वो कभी कभार ऐसे ही।
1: पता है तुझे? तेरे रूम के दरवाजे बंद रखती है वो। इस घर के दरवाजे आज तक कभी भी बंद नहीं हुए। ये इस घर में नहीं चलेगा।
0: अरे तो मां लिखती है अंदर। दरवाजा खोल के लिखेगी क्या? उसका भी घर है ना। ऐसा करता हूं, मैं बोलता हूं।